इतना रोगी नहीं होता जिन्ना कि बहुता खान वाला रोगी होता है। भुखे घट मरते ने, बहुते खान वाले ज्यादा मरते। ए रसना सतगुरु जी उपदेश कर रहे ने, ए रसना तू अन रस राच रही। अन रस कहते ने होर रस, होर रसा विच ते पै गई, ऐ भी खा लवा वह भी खा लवा। किसी की निंदा चुगली की, किसी नु माड़ा कहा, किसी नु गालां कढ़िया, माड़ी गल करके किसी का घर बर्बाद कर दिता, ये काम तो तू किया। पर ऐ रसना तू प्रभु का स्मरण नहीं किया। खाण दे भी रस हैं, झूठ बोलना भी का रस है, निंदा चुगली करनी भी का रस है, ये सारे रस।

बार न समझाइए ऐ रसना जे गुरु महापुरुष ओ कहंदे ने अकाल पुरख शरीर दे जितने रोम ने इन्हां नूं जबान बना दे रसना बना दे ताकि तेरा जस गाइए।

मरा मरा जपदिया जपदिया ऐसी मालक दी मेर होई बिरती लग गई मन जुड़ गया ए रसना जेड़ी मरा मरा कहती सी कृपा हुई मालक दी मरा मरा हुण राम राम हो गए समा बीते ओही आरिया समाज दे सत रिखी फिर उस पासे आए राम राम दी आवाज आ रही है इधर उधर देखिया बंदा कोई नजर नहीं आंदा एक मिट्टी दा ढेर है उत्ते कास उगे अपनी शक्ति ना

0: धरियो गुर हथ, जाके बसीस धरियो गुर हथ। सब साथ संगत प्यार नाल आखो सतनाम
1: श्री वाहे,
0: फिर आखो सतनाम
1: श्री वाहे।
0: ये शब्द भी धन सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी की बाणी दा है। मेरे हीर है रतन नाम हर बसिया, नाम नू रतन आख्या और ये अमोलक रतन है। साई नाम अमोल, कीम ना कोई जान दो, ये अमूल्य है। अमूलो अमूल आख्या ना जाए, हीरिया दी रतना दी कीमत। जदों असी पहली बार 71 च गए यूके, तो कोई नूर हीरा वेखण गए, चाहे साडे कोल नहीं पर सानू पता ना साडा है। हर सिख दे मन चाहुंदा भी साडा है, धोखे ना लै गए, हीरा फेरी करके साथों लै गए, ये साडा है। असी वेखण गए, उत्थे कीमत लिखी हुई सी, इहदी आ कीमत है, ऐस हीरे दी आ कीमत है, ऐस रतन दी आ कीमत है। तो जिहड़ा ए रतन है ना नाम, इहदी कोई कीमत नहीं पा सकदा। सब आखो सत
1: नाम श्री वाहे।
0: साई नाम अमोल, कीम ना कोई जान दो, इहदी कोई कीमत नहीं पा सकदा। ते महाराज कहिंदे मेरे हीर है मेरे हिरदे च, नाम उदों वस गया, ये रतन अमोलक रतन नाम, जदों मेरे गुरु ने मेरे सिर ते हाथ रखिया। मेरे हीर है रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा, मेरा गुरु समरथ है। मेरे गुरु ने जदों मेरे सिर ते हाथ रखिया ना, ये नाम मन च वस गया। एक है नाम जबान ते रहना, एक है मन च

जाना ते है तू परमात्मा दे नाल मिला, पर किवें तेरा मिलाप परमात्मा दे नाल होवे। जेड़े गुण परमात्मा चाहुंदा है वो तां तेरे विच नहीं हन, क्योंकि चंगा इंसान किसी

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेन अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शारीरिक रूप नहीं वेखदा,

वो धनवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आपकी मंग है कि बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलूं, ते मेरा परमात्मा कैसा है? मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा ते हुक्म करदा भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिदे ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

के लजा रही सी। रस्ते विच एक मुसाफर पुछ कर रहे, बीबी कुत्ते दा मास शराब विच रिन्ने आ, मनुख दी खोपरी विच बने, ते इसनू तू टक के क्यों लजा रही।

फिर तुसी दसो कि अपने अवगुण किवें बख्शाए जा सकते ने। वो सतगुरु साडे अवगुण बख्श भी देवेगा। भाई सब कहने ने मैं विश्वास नाल कहना वा कि हे मनुख तू अवगुण करने छड़ दे, ओ परमात्मा तेरे अवगुण बख्श देवेगा। ऐसा नहीं कि अवगुण भी करी जाए ते नाल दी नाल बख्शाई भी जाए, नहीं एक दिन तौबा कर ले, ओ ते बख्शन जोग है ही, उन्हें ते बख्शते रहना है। पर ऐसी गल नहीं कि तू अवगुण करदा ही चला जावे, नहीं तू तौबा कर, सतगुरु दा सिमरन कर।

पालत पालत मुख उजल होए है, निथ ध्याय हर पुरख निरंजना। In this world and the next, radiant and beautiful are the faces of those who continually meditate

ए वाणी महापुरुष की निज कर वासा हो गुरबाणी गावो भा अमृत वाणी अमियो रस अमृत हर काना अमृत वाणी अमियो रस अमृत हर काना मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ उपदेश सुनो गुरबाणी गावो पाई उपदेश सुनो तुम गुरु सिखो।

सफल हो मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना गुरबाणी गावो पाई सुख सहज आनंद गाना तब जपते हैं दुख जाए

तरम में श्रेष्ठ तरम, हर को नाम जप निर्मल कर्म। छगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल क्रिया। छगल बाणी में अमृत बाणी, हर को जस सुन रसन बखानी। मैं तो कर्म करने सी सिमरन वाली, मैं कुछ कीता भी सही तां रिद्धियां सिद्धियां नूं प्राप्त करके हंकार दी पंड होर वड्डी कर ली। धन गुरु नानक पातशाह संसार नूं उतारदे होए जदों वली कंधारी जेड़ा बड़े अहंकार दे नाल चिल्ले कट्टे तपस्या कीती, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां ते अपने

અનેક પાછા સંસાર તાર દે હોય જિથે જિથે ભી ગયે વડે તો વડે પાપી નું કિવેં તાર્યા જિવેં સજ્જન નું સંત બના દેતા ભૂમિએ ચોર નું સાધુ બના દેતા આપ હી નહીં અનેકા નું ગુરુ નાનક દે ચરના નાલ જોડન વાલા બના દેતા दीपालपुर दे कोड़ी दे पास गए ता उसनू ही फिर एही शुभ उपदेश दिता पाई जिस वाहिगुरु ने तैनू सोना ए मनुच्छा जन्म बख्शिया सी अखां नक कन मुंह आरोग कंचन वर्गा शरीर दिता सी जे तू शुकराना कर दो जे तू उसका सिमरन कर दो ता आज तेरी ए हालत ना होगी बचपन खेडा विच जवानी विकारा विच तैं बतीत कर दिती उस अकाल पुरख वाहेगुरु नूं तूं भुल गयो विसार दिता ते जदों तूं विसारिया तां फिर दुखां ने आ घेरा कत्या ते अज तेरी ए हालत हो गई। याद रख जिस तरह हुण तेरा शरीर कोड़ी है ना तैनूं कोई नाल नहीं बैठन देंदा शहरों बाहर कढ दित्ता लोगां ने तैनूं जदों तूं पंज भूतक शरीर त्याग के जावेगा आत्मा तेरी कलंकित हुई होवेगी दरगाह विच भी तैनू कोई कोल ना बैण देवेगा क्योंकि कोल ओही बैठदे हन जिन्नी तेरा नाम ध्याया। धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने जिसना ने अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम ध्यावना कीता है सिमरन कीता है इसलिए उन्हां दा ही आउणा सफल होया है।